0: New psychoactive substances are synthetic substances manufactured in the clandestine laboratories.
1: They are running in very remote places, places which are not easily traceable in jungle areas, forest areas. So very difficult to detect also.
2: In a shrubby place wherein it is hidden by all the shrubs, you set up some factory in some such area.
3: Then a network tha, kuch bhi nahi, one way road. Means koi aayega to bhi pata chalega, koi jayega to bhi pata chalega. Aisi jagah main gaya tha. Ye basically sab jungalon ke beech mein hota hai. Kyunki iski jo smell hoti hai, wo 2-3 kilometer, 2-3 kilometer tak dur tak jayegi, to pata chal jayega kuch chemicals hai, kuch ban raha hai. Aaju-baju tabele hote hai. Shit. तबेले में स्मेल मर जाती है तो ये लोग वहाँ ही प्रोसेस करते हैं
1: दिस ट्रेंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेफेड्रोन विद द क्लैंडेस्टाइन लेबोरेटरी हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड
0: द इमर्जेंस ऑफ एमपीएस हैज बिकम अ ग्लोबल फेनोमेनन एंड आल्सो पोसेस सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस

0: NPS means new psychoactive substance, which are mind-altering substances. Mefedrone internationally is an NPS. I will take you through the East Africa, wherein there is a leaf which is called khat leaves. So it is chewed. It has some active components which alters the mind of the person. It's a plant-based substance. That mimic is found in mefedrone. The kick which somebody gets, or the high which somebody gets by chewing this, can be directly related to mefedrone. Mefedrone is clandestinely manufactured. There have been plenty of cases of mefedrone factory bust.
1: मेफेड्रॉन मुंबई में ये लोग इसको चाची बोलते हैं तो वो बेचते हुए
0: मेफेड्रॉन एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोकीन सो इफ समबडी डजंट हैव द वेयरविथऑल टू बाय कोकीन ही विल गो इन फॉर मेफेड्रॉन चीप व्हेन कंपेयर्ड टू कोकीन
1: कोकीन अच्छे में अच्छा 15,000 तक भी जाता है और मेफेड्रॉन अच्छे में अच्छा 1500 रुपये एक ग्राम या 18 में पकड़ाया था 30 ग्राम मेफेड्रॉन के साथ तो अभी पता चला कि पुलिस ने हमको कहा आपको रहना है हम आपको छोड़ देंगे आगे का इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बस तो उसके बाद फिर मैं इन्फॉर्मेशन की लाइन में आया 7 ईयर्स से 7 साल से इन्फॉर्मेशन तो 7 साल से 7 साल में मोस्टली ज़्यादा करके मेफेड्रॉन इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं कर लेता हूँ कंज्यूम मेफेड्रॉन तभी हमको वो लोग को भी हम पे ट्रस्ट आएगा और हमको उन पर ट्रस्ट हमको ट्रस्ट बनाना पड़ता है जो मुझे कमर्शियल दे सकता है 52 ग्राम्स 90% चांस है वो मुझे मिलाएगा 90% अब मुझसे मिल के उससे आगे का सोच लेंगे क्या भाई तुम कितना दे सकते हो मेरे को ज़्यादा लगता है मेरे को 1-2 kg लगता है इफ़ एग्री हुआ लेके उनका सोच करेंगे साहब ये एग्री है देने के लिए ऐसा करके हम इंफॉर्मेशन लेते और फिर आगे तक के 6 मंथ 3 मंथ लगता है ये को होमवर्क करना होमवर्क
0: कोकेन इज इलीगल मेफेड्रोन इज ऑल्सो इलीगल देयर इज नो डाउट अबाउट इट बट देयर इज मशरूमिंग ऑफ clandestine labs.
2: I think 3-4 years back, hardly 1 or 2 seizures in a year. But now we can see that 25-30 seizures are taking place.

0: केमिकल लेना बहुत इजी है, केमिकल तो ऐसे आज ऑर्डर करूँगा कल आ जाएगा। जिनकी केमिकल की फैक्ट्री है उनके पास लाइसेंस है और उनको लाइसेंस ओनर को ही देना लीगल है। इफ़ 10 रुपये का केमिकल है तो मैं आपको 1 का 3 ऑफर करूँगा, 4 ऑफर करूँगा, 5 भी ऑफर कर दूँगा। अब आप पहले ना बोलोगे, बाद में सोच के चल ठीक है बोले ले ही रहे करके क्या है, तो आप केमिकल तो मुझे प्रोवाइड कर दोगे।
1: So what we are doing this awareness campaign across all over India, we are asking them to give us the feedback about the suspicious transactions of any, if someone is coming and asking for the chemicals which do not have any legitimate use.
2: And you'll have to tell to whom you're selling, how much did you sell. So you cannot be selling it to somebody who has nothing to do with it. So there is a way of monitoring it. But of course, there are any number of persons who would attempt to subvert the system.
1: Recently, there was one investigation. Chemical was supposed to be exported from India, going for the one particular A country. Chemical was declared properly while it was being exported from the India. But from that country A, it was going by the different name to the country B. It was misdeclared at their end. It was declared something else, where it was going to be used for illicit manufacturing of drugs. So there is an international investigation. Recently, we have many cases where this complete supply chain has been busted and they are all booked under the relevant laws.
0: Drugs peddlers को पकड़ा है तो उनसे पूछताछ में पता चला तो chemical की factories पे भी उन्हें raid किया है। अभी last raid मुझे पता है वलसाड में हुई थी, बड़े chemical factory वाले को लिए थे NCB ने।
1: But there is a new trend by the traffickers actually. They circumvent this whole process of control mechanism. They are just going by the N-1, which means just one stage before the final. Because that is a different molecule, different structure. If we brought this one particular chemical in under control, they will go N-1, N-2, and then one more back. So if we start controlling every chemical, then we'll end up controlling water also.
3: So think of making a drug like following a recipe with several stages. If the final drug is the last stage, then N-1 is the precursors that need one more chemical step to become the final drug. And N-2 needs 2 steps.
2: So chemistry is an integral part of that. The chemists have a huge role to play. So without the chemist, the factory cannot function because he is the backbone of the factory. It is the chemist who would be running the show.
0: ये डॉक्टर हम उन्हें कहते हैं जो केमिस्ट्री की इनको पूरी नॉलेज होती है, या तो हम बोल देते बिरयानी बनाने वाले, तो जो बिरयानी बना रहा है, अब हर जगह की बिरयानी अलग होती है, कहीं ना कहीं तो उससे कुछ ना कुछ मिस हो गई, एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा, कुछ फ्लेम फास्ट हो गई, जो बॉयलर की फ्लेम जरा सी फास्ट हो गई, 1% का फर्क आएगा ही आएगा, आता ही है। मैं हजारों डॉक्टर से मिल चुका हूँ, यहाँ तक कि जेलों में भी मिला हूँ मैं। वो लोग को मैंने पूछा भी है, क्वेश्चन भी किया है, अरे बोले हो ही जाता है, बोले यार वो लोग को भी कंज्यूम करते वो लोग, तभी उनका माइंड शार्प होता है, तब वो बनाते खड़े देखे। बहुत ना के बराबर रेयरली डॉक्टर हो गए जो कंज्यूम नहीं करते, बाकी तो सब कंज्यूम करते ही है।
2: सो दे हैव अ इनडेप्थ नॉलेज, समबडी हु हैज अ इनडेप्थ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, दे वुड बी रोप्ड इन। इट्स नॉट नेसेसरीली केमिस्ट बाय दिस वन, बट ही वुड हैव द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इन सम ऑफ द केसेस बुक्ड इन वापी एंड अंकलेश्वर, इट इज द केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड ओस्मानिया, दे हैव बीन कॉट।